गुरु रामदास पातशाह की सिफत करते हुए कि समर्थ गुरु ने सिर के उत्ते हाथ रखिया है। जिस तरह गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक साहब की सेवा की थी, तां गुरु बने

माता जी चार चफेरे देखन लग पे कि कोई एहो जी नुहार मिले जिदे बारे मैं दसा कि एहो जिया लड़का होना चाहिदा है।

रामदास जी हो गए ने ते सेवा करन लग पए, दिन रात सेवा करदे ने। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन,

रामदास पातशाह गुरगद्दी ते बैठे, गुरु अमरदास दे वेले ही गुरु रामदास पातशाह ने जिथे अज अमृतसर शहर वसिया होया है ए जगह खरीद के इथे

भगती ते शक्ति दा सोमा समझ के दुनिया दे लोकां ने कई वारी बर्बाद करना चाहिया, पर जिन्हां ने बर्बाद करन दी कोशिश की थी समय दे नाल ओ आप ही

जे तुहाडा हरमंदर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिनू ए पता लगे कि साडा हरमंदर कैद है, असी हरमंदर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरमंदर साहब नू आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखा ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपनी जवाना दे नाल तुरे ने। अमृतसर दे लागे बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखा नू जान प्यारी नहीं, अपना हरमंदर प्यारा है। अपनिया जाना वारिया अते बाबा दीप सिंह दा जदू सिर तू सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हरमंदर नू आजाद कराया। क्यों के बाबा दीप सिंह जी जानते ने ये गुरु रामदास जी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे कुछ चिर ता खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हर मंदिर नू बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकता है, पर ये ता गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा।

तेरे नाम इते नानक आने दी धरती है। एक कृपा करी किसे चीज दी इच्छा होवे घरों ना नहीं पिता कोला ना मंगी जे किसे नू लोड़ वंद तेरे कोल कोई आ जाए तेरे कोल कोई सवाली आ जाए ते इस तरह करया कर एक पत्थर दी ठीकरी ते घड़े दी ठीकरी ते बस अपना नाम लिख के मेरे कोल भेज दई जेड़ा भी सवाली ठीकरी लेके आएगा ओदे ते तेरा नाम लिखया होएगा।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

हर अखो सतनाम। जिथे बाबा पैर जिस धरती ते चरण पाए उस स्थान ते पूजा अकाल पुरख दी शुरू हो गई। ते जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख दी पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। माण करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर गए सी

गुरसिक पलके उठ के गुरसिक पलके उठ के अमृत मिले सदा वंदा गुरसिक पलके उठ के अमृत मिले सदा वंदा गुर के बचन उचार के धर्मशाल दे जागे संत जना धर्मशाल दी सुरत करन दा किरत बिरत कर धर्म दी किरत बिरत कर धर्म दी किरत बिरत कर धर्म दी ले प्रसाद

मन मोह विकार मन का जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे हर नाम सिमरै अंदनों चरण कमल।

परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नूं सत

तारा राणी सत संगत विच जाया करदी सी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री का नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया करदी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदिया राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जाण तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई है। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिदा है, ये रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौं गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पई। राजा इस दे सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चों बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दिती ते बाहर जंदरा मार दिता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति हुई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खराऊं किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गैब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खराम लभ पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। सात संगत बोलो श्री, जहां एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती, तां वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाऊं किथे है। उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। आख्या ए खड़ाऊं, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है, ते ए कित्थों आ गई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। आख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लई भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लई भी मंगदी हां, तेरे लई भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सवारे ते मेरा भी सवारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहा। इन्हां पंक्तियां नूं सिद्ध कर दिता कि जो इच्छा सोई फल पावे। प्यारी सत संगत, जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।